0: क्या घर ये तरफ भी आ गया
1: दौलत
2: कौन
0: पता नहीं दौलत पीछे गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लॉन्ड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

no, सुनना सुन गीत मनोरंजन को अटुसाही नो यो हो पश्चिम चितवन को आवाज सामुदायिक रेडियो साहिनो साहिनो साहिनो 89.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: तो पैसे
1: क्या घर ये घर भी आ गया
0: दौलत
1: कौन
0: पता नहीं दारूपी की गाड़ी चला रहा था मरती मरती बची हूँ मैं
1: था तो ये साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है